0: पियाल हाथ लिए आलू तम आगो
1: कोल ड्राइव विकेटा
2: लकाना इवन इन ड्राइव
1: හවස හතරයි විනාඩි 39යි වෙලාව.